आस मने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार, मने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मने सुरत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की सुध। मने मोहे चोटा ना खाए, मने जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मने मार्ग ठाग ना पाए, मने पास्यों प्रगट जाए। मने मगन चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर्म।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों किरपा कर है तिन्ना अमृतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवां। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उस रह, रतनी ता होहे जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया। अवर नाही थाओ राओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ। मत देख पूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखै पाओ। मत देख पूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ। सुल्तान होवा मेल लस्कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख पूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ। श्री राग महला पहला, कोट कोटि मेरी आर जा। पवन पीण पियाओ, चंद सूरज दोए गुफै ना देखा। सुपने साउन ना थाओ, पी तेरी कीमत ना पवै। हों के वडे आखा नाओ, साचा निरंकार निज थाए। सुन सुन आखण आखणा, जे भावै करे तुमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए। अग्गी सेती जालिया, भस्म सेती रल जाओ। पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ। पंखी होए कै जे भवां, सह असमानी जाओ। नदरी किसै ना आवो, ना किश पिया ना खाओ। पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ। नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ। मसू टूट ना आवई, लेखन पौन चलाओ। पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ।

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावे दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टिया गुरमुख जी नै आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रव नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जी।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जो

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा, ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे समाली, रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अनजन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जात सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए।

सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा, मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नित नित होए खुवार। फिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए रहाओ, गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटी है, सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चले, दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए, नानक गुरमुख नाम तिहाई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना है अपना, तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया, से ही कर्म करे, सहजे सच मिलावड़ा, सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

जो सच रहे लिव लाए, नदरी नाम त्याई है, विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे पाग सत संगत लहै, सतगुर पेटै जिस आए, आन दिन नामे रतिया, दुख बिखिया विचों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा, नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। आपना भउ दिन पाए उन जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकाई अन हर राख्या अवतार, सच्ची बाणी सच मानो सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हाँ मैं मैल भर नाल, हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवरन हार, रहाओ सच्चा शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंधन नामे रतिया, ज्योति जो समाए, ज्योति हूं प्रभ जापदा, बिन सतगुर बूझ ना पाए, जिनको पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तिने आए, मेरे नाम है शब्द मणि दूजे पाए खुआए, तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए, नजर करे प्रभ अपनी आपे लय मिलाए, सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पया जाए, पापो पाप कमाम दे पापे पजै पचाए, सो प्रभ नजर ना आवई मनमुख बूझ ना पाए, जिस वे खाले सोई वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा। बिन गुर रोग न टुटई हो मैं पीण ना जाए, गुर प्रसादी मन वसै नामे रहे समाए, गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए, मन रे निज कर वासा होए, राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए, रहाओ हर एक को दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोए, शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए, सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तैं दे, हम मैं सबा गणत है गणत नो सुख नाहे, बेकी कार कमावनी बेख ही माए समाहे, बिन नामे ठौर ना पाए नी जमपुर दुख सुहाहे, जियो पिंड सब तिसदा तिसै दाया धार, गुर प्रसादी बुझी ता पाए मोख द्वार, नानक नाम सलाहे तू अंत ना पारा वार। श्री राग महला तीजा। तिन्ना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार, गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार, सदा सदा साचे गुण गावै साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी दित्तोन भगत भंडार, मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाई है हर सो रह समाए, रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना किछु न जाए, जेह वरती सब सच्चा अमृत पीवै रस गुण गाए, गुरमुखे हो रंग पाई है जिसनो कृपा करे रजाए, संसाए हो संसार है सुत्या रहन विहाए, के अपने भाणे कढ

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगुणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिन्नी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए नानक सच्चा है पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

एको विसर ना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपां गुर की पैरी पाहे। रहाओ दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजिए जा हिरदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डै धोए। सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संग मसकते तूठे पावा देव। सब किश वसगत साहेब है आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहार नै मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इकसै दी सामग्री इकसै दी है रीत। इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचर चीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवा सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। मेरे मन एक सस्यो चित लाए। एक बिन सब धंध है समिथया मोह माए। रहाओ लख खुशियां पात साहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस तो पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावने।

मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग, करना हर पिछान, गुरप्रसादी मुखी उजला, जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया, तजिया सब मान, पाया लाहा लाभ नाम, पूर्ण होए काम, कर किरपा प्रभ मेलिया, दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया, आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया, गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिले पाइए शब्द निधान।

माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार, सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाईया नेदार आयादार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराध्य।

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

सहजे शिव तीर्थया भवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाईऐ साधु तूर लूक मावै किस्ते जां वेखै सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर

मेरे मन गुर जेवड़े अवर ना कोए, दूजा थाओ ना को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ भागी माए। गुरदाता समर्थ गुर, गुर समय रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए। केत मुख गुर सा लाही है, करण कारण समर्थ से मथे निचर रहे। जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया। पै पंजन दुख लाथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना। जम दूत ना लागे डंड, गुर नाल तुलना लगई खोज डिठा ब्रह्मांड। नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवा, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध। भाई मीत सुरिद किए, बिख्या रचिया बाद। जांदे बलबना हो वई विण नावे बिस्माद, मेरे मन सतगुर की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना, मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कूकर हर काया तावै दै दिस जाए, लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए, माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए, जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार, जिसनो रखे सो रह समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, कर दूजा

सतगुर से प्यारो, क्या थोड़ी बात गुमानो रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रतागृत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या दुर्लभ जन्म पा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदिया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई हो किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तें दे।

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली माने नाओ साची प्रीत न तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबल हार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पेरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हौ सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथ आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आसर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हमें तृष्णा मार कै

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल न बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै घर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मनमस

दाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिनना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविए गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईए पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मिटिए लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटिए गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारिये पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़िए पी विकसे असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अदको त्यों सुख कणो मंतन सां शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है त्रिपवन सो जी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनु जो चुग दे सरतल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले जाए सचा पड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हो मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुखे आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग

ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणी ना पर्यंक समाए रहाओ। पुली फिर जसंतरी पुली गृहता जाए, पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए, तरो विशुनी क्यों मिले गर मुठी बिललाए, विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार, ज्यो पावे त्यो रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान, तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान, गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान, प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार, सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार, कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार, गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए, गुर का शब्द मन वसिया मैं विचों खोए, नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए, कर्म मिले ता पाई है आप ना लया जाए, गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए, सच्चे सेती रत्या सचो पल्ले पाए, पुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार, गुरमत मन समझाया लागा उतसे प्यार, नानक साच ना विसर मिले शब्द अपार, श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुतबंध पकार नार, तन जोबन जग ठगया लभ लोभ अहंकार, मोह ठगौली हो मुई सा वरतै संसार, मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, मैं तुझ बिन अवर ना पावई तू पावे सुख होए रहाओ, नाम सलाही रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चल सी कूड़ा मोह ना वेख, वाट वटाऊ आया नित चलदा साथ देख, आखने आखे के तड़े गुरबिन बूझ ना होए, नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए, जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोए, गुर सरण आई छुट्टी है मनमुखोटी रास, अहट तात पात साह की कड़िया शब्द विगास, आपे परखे पारखू पवै खजाने रास, तेरी कीमत ना पवै सब डिठी ठोक बजाए, कहने हाथ न लबे सच टिकै पत पाए, गुरमत तू सा लहाना होर कीमत कहन न जाए, जित तन नाम ना

पाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी वृथा जन्म गवाया। रहाओ आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चलद्या नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण।

पत गवाई बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मानी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अनदिन भगत करै दिन राती हों मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सच्चे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी बीचार सतगुर सेवै सहज उपजाय हम मैं तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हम मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वछर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा हम मैं कर्म कमाव दे जम डंड लगे तिन आए जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूर्व करतै लिखिया तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ विण सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागाओ पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए जे हर हर कीचै बहुत लोचिया कीर्तना मिटिया जाए हर का पाणा भगती मन्या से भगत पय दर थाए गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिखपल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमाम दे बिख हमै तज विकार मन हठ कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जसंत ना पारा वार गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै ना आवै जाए निज कर वासा पाया हर हर नाम समाए मन रे गुर की कर कमाए गुर कै पाणे जे चलै ता अंधन राचै हर नाए रहाओ पंखी बिरख सुहावड़े उड़ै चौदे जाए जेता उड़ै दुख घणे नित दाजै तै बिललाए बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरि आवला साचै सहि सुभाए साखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए मानमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ तिन्ना पास ना बैसीऐ ओना कर ना गिराओ कटिया तै नित जालिया ओना शब्द ना नाओ हुक्मे कर्म कमावणे पया किरत फिराओ हुक्मे दर्शन देखना जै पे जै तै जाओ हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ हुक्म ना जाने बपड़े भूले फिरै गवार मन अठ कर्म कमाम दे नित नित होए खुवार अंतर सांत ना आवई ना

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्याप्त है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा भाव न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंधन नाम वखाणे एको पड़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै ता गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके पेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे हर नाम वसिया सच्ची कार कमाए सेवड़ भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मनमुख कर्म कमावणे हौ मैं जलै जलाए जमण मरण ना चुकई फिर आवै जाए त्रेह गुणा में सहज ना पाई है त्रै गुण परम भुलाए पढ़िए गुणिया क्या कथिए जा मुंडों को था जाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहने, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

है पाया, जिस मेले सो भगता सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी।

तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेखै कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो परतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम भुलाया आपो तुद खोआया प्रताप लगा दोहागणी भाग जना के नाही जियो दोहागणी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिरै निमाणिया मैले वेस्त ना कामणी दुखी रहन विहाय जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लय मिलाए जियो हुक्म जिन्हां नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सही आसे सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्हां भाणे कार रसाया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह ले मिलाए जियो सतगुर मिलिया फल पाया जिन विचों अह करण चुकाया दुरमत का दो कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नजर करै निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिया जित मिलिया नाम वखाणिया सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हाँ सतगुर विटो घुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माहे समाया तन करता आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया मेरा प्रभ सब किश पाया आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवकी पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करै जयकार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करै जयकार जियो

तन जो बन सो चित हरका नाम ना चित ही बन जा रहा मित्रा। बद्दा छुट्टै जित हरका नाम ना चित प्राणी, बिकल भया संग माया, तन सो रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार न कीतो, कर्म न कीतो मित, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, तन जोबन सो चित। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, लावी आया खेत, जां जां पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा, किसे न मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे न मिलियो, जां जां पकड़ चलाया, झूठा रुकन हुआ दुआले, खिन मैं पया पराया। साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत।

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्याप्या मन जा रहा मित्रा अंधले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंधले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहर गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यों मरै। मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोय न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपाल। लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल। संत सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो। मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो। अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया। भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया। सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते। एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते। डखना

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईए कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कौ पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर एक सहदा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया एक आशाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जां पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेहे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रहै, कउ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

दरखड़िया नाल खसमै रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमाननिया नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिपत है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने।

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सह समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंत जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंजर

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखणी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मंतन सौ पेकंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नामे कने ना पाया, देखो हृदय दे विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख ज्ञानी महा दुख पाए, दे डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावे, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आप बै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड़ियाई, हर धर्म न्याओ कियो। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख लियो। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। श्लोक महला तीजा।

दिन दिन अवध घटता है, मोर मोर कर अधकलाड़ धार, पेखत ही जमरा हसै। ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बुझे जब मोया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिख्या रास, इत संगत नहीं चो मरनार, मैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी। इन बिद पव सागर तरना, जात पावे ता लागे पाओ। परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाणता खसम मिलना। रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया। कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा।

देख तो नहीं उपजै, मान करत नहीं बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। थाका ते जुड़िया मन पंखी, कर आंगन ना सुखाई, बेणी कहै सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई। श्री राग तोही मोही, मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जाओ पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता पतत पावनो नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जय जनते स्वामी, शरीर अराधे मोको विचार देहू, रामदास समदालो समझावे को। राग माज चौबदे कर पहला महला चौथा, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया, गुरपुरै हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चलै जियो, मैं हर हर खर चलया बन पलै, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, हर निश्चल हर तन पलै जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावै मेरे प्राण जीवाया। हव रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चलै जियो, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हव रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पलै जियो। माझ महला चौथा, मधसूदन मेरे मंत्र प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिलै वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हाँ मन तन खोजी पाल पालाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, वे संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जलमल कमल वसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरव लगावै। हर हर दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माझ महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरी है जियो। मेरी वेदना हर गुर पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दी जय गुरपुरे, मैं हर हर नाम उधरी है जियो। हम चात्रक दीन सदगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल लेदो हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो। माझ महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटा खावै, बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन भीजै जियो। माझ महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पियाया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टोल टोल पौंदा जियो। आवो संत मैं गल मिलाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो। वड भागी हर संत मिलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर

जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीख बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता सेती रंग ना लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए, दुलब देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राखो सरमिया साड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाने, कल कले सब दूर पयाने, सात सुख सहज तुनि उपजी, साधु संग निवासा जियो।

अमृत वर्ख है अनहद बाणी मंतन अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो जिसके सेत नहीं प्रत पारे पार ब्रह्म प्रपय रखवारे सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्ब जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नगर निहारा जल थल महियल सब त्रिपताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच्छ पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख भंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लह

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभु उठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जियां का दाता को विरलाया पछाणै जियो प्रभ मिरणै की हे निशानी मन एको सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणै जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारै जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करतै दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किछु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समर्थ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

दृष्ट तार अपना दास वारिया, घड़ घड़ अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक स्विण होर दूजा नाही, बाबा नानक हे मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मंत्र रत्ता राम प्यारे, सरबस दीजा अपना वारे, आठ पहर गोविंद गुण गाइए, बिसरना कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सा संग बिचारा, साधु संग तरी जैसा गुरु, कटिया जमकी फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप लाखा पेवा, काम क्रोध कृव गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पए जिस प्राणी, सास संग मिले सारंग पाणी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, प्रमाण ग्रस्तो दासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया, बिनसे आलस रोगा जियो। जा कै ग्रह नव निधार भाई, तिस मिलिया जिस पुरब कमाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेसर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन मैं थापो थाप नहारा, आप कंती आप सारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन वे जोगा जियो। अंचल लाए सब श्रेष्ठ तराई, अपना नाओ आप जपाई, गुरबोध पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब परोई एक तागै, जिस लाए लए सो चरणी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो, तेरी महिमा तू है जाणै, अपना आप तू आप पछाणै। हम बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लो पीठा जियो, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरै कलमल।

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंध न जागी बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सचे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जे सिमरतवार ने चल पाई है नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पतिया मणिया हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावने आ रहाओ ना को मेरा हो किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा हो मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावने आ मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ सागत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेखना मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावने आ पेयड़े पर जातो नाही झूठ विछुनी रोवे ताही अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बख्सावने आ पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत बिचारा आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने आ गुरमुख बूझे कथ कहावे सच्चे ठाकर साचो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावने आ माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हौ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने आ हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ गुरमति प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने आ रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंदर गावे सहजे पद करावने आ इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने आ सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अज्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजरक पाठ खुलावने आ हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारने आ माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बुझे गुण कै गुणी समावने हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावने जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावने पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈਅੜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਸੱਚ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ। ਆਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ।

करि अवगण पछो तावणिया, मनमुख अंधे किछु ना सूझै, मरण लिखाए आए नहीं बूझै, मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावै जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाई है मुख द्वार, अंदर बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मंत्र मोया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावै, गुर कै शब्द सहजे सुख समावै। हाँ बलिहारी सात निविटों, गुर सेवा चितलावणिया। सच्चा सचो सच पतीजै, गुर प्रसादी अंदर भीजै, बै सुथान हर गुण गावै, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हों मैं जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सोभा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवै वड्डी वड्याई, हर जी चिंत वसै मन आई। हर जियो सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस्तिखा लहावणिया। हां वारी जियो वारी, सच संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मिलै, गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हों मैं मैल गवाए, दर सच्चै सोभा पावणिया। बिन गुर नाम ना पाया जाए, से साधक रहे बिल लाए, बिन गुर सेवे सुख ना होवी, पूरे पाग गुर पावणिया।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सा लाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानके को नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मरमर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नेह चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सदरै समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चै नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन। गुरमत मन वसावणिया, हाउ वारी जियो वारी। सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै। शोभा सुरत सुहावणिया, राओ सब को तेरा भगत कहाए। सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहन। रंग राते भगत करावणिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा। गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै। तू आपे नाउ जपावणिया, गुरमती हर मन वसाया। हरख सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही। हर नाम मन वसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाए। नवनिध नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया। सब दे मेल मिलावणिया, तू दयाल सदा सुखदाता। तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई। नाम रते सुख पावणिया, सदा सदा साचे तुद सा लाही। गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए। मन मनै मनै मिलावणिया, गुरमुख होवै सो सा लाहे। साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर। गुर सबदी हर मेला बणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती। गुण कै गुणी समावणिया, हाउ वारी जियो वारी। नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा। हाउ मैं मार मिलावणिया, रहाओ हर जियो साचा साची नाई। गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए। तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता। गुरमत आप मिलावणिया, कामण गुणवंती हर पाए। पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण। सच उपदेश समावणिया, शब्द विसारण।

लिखदिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखै तै कूड कमावै, जल जावै कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखै विचार, सेजन सच्चे पावै मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखै, गुरप्रसादी मिलै सोई जन लिखै। नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे गुरते पावणिया। माझ महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवै। हम मैं लागी गुरसबदी खोवै। मन निर्मलो अंदन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय, जो अंदन हर

आपे करे कराए आपे, आपे थापो थापे आपे, तू ते बाहर कछु ना होवे, तू आपे करे लावण्या। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस्या विखाले सो वेखै कोई, नानक नाम वसै कटे अंतर, आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मह पाई, सदा सिरे भी एक मन त्याई, गुरमुख सच समावण्या। हाँ वारी जियो वारी, जग जीवन मन वसावण्या, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावण्या। रहाओ करी मैं तरती तौल पाताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत

गुरमुख हो वैसो हम मैं मारे सचो सचते आवणिया काया अंदर पाप पुन दुए पाई दुही मिलकै सृष्टि उपाई दोवै मार जाए एकत कर आवै गुरमत सहज समावणिया घर ही माहे दूजे पाए अनेरा चानन होवै छोड़ै हो मैं मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदन नाम ते आवणिया अंतर ज्योत।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लाहा नाम सद पावणिया। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देश जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया। पेयड़ै पिर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पिर राख्या कंठ लाए शब्दे पिर रा वैसे सुहावणिया। आपे देवै सद बुलाए अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिले वडियाई अंदन सदा गुण गावणिया। माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा। हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणिया। हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ अलाख्या पेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावणिया। दूजै पाए पड़ै नहीं बूजै त्रिबद माया कारण लूजै। त्रिबद बंधन टूटै गुरसबदी गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल वस न आवै

हाँ हाँ करे तय आप जनाए, बहु कर्म करे एक स्थाए न पाए। तो इते बाहर किशु ना होवे, बक्से शब्द सुहावणिया। उपजे पचे हर बुझे नाही, अंदन दूजे पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणे आ। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै सब

तुद जेवड़ दाता है वर ना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए साजना का मंत्र कमाए आप तरै सगले कुल तारे तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा तू बेअंत वत मूचो मूचा हाँ कुर्बानी तेरे वन्या नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बाधा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन तूटा कौन कर्म कौन निहकर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जे तावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता धन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हम मैं बाधा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण तूटा गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिए मनमुख बिछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जे तावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे एक स्ते होयो अनंता नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभु बनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुखदाता तू करे सोई सुख पावण्या। हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवै ना लावण्या रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा थान थनंतर तू है इको एक वरतावण्या सगल मनोरथ।

ज्ञान आठ साठ तीर्थ सगल पुन्न जी दया परवान जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फालगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड भागनी वर पाया हर राए मिल सहिया मंगल गा वही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए हलत पलत सवार निचल दितिया न जाए संसार सागर ते रखियन बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही जिसनों तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहीं जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देन कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार।

कुंडम डिठ मैं नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी। तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती। तू जाने जिन उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिना में मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती। तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद ध्याय दे मेरे सच्चिया। बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो।

एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी, ना सबत जेर जमी, अस्त एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन्न पावन थिर ना कोई, एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रह जार, द्रख्त आव्यास कार, देहांत सुई, एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सकै कोए, कला तरै हरै सुई, एक तुई पौड़ी, सच्चा तेरा हुक्म, गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए, सच पछाणिया, सच तेरा दरबार, शब्द निशाणिया, सच्चा शब्द विचार, सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार, परम पुलाणिया, विष्टा अंदर वास, साधना जाणिया, विण नावें दुख पाए आवन जाणिया, नानक पारख आप, जिन खोटा खरा पछाणिया, सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा कुहियां, इन आखवाल

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामन कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर ब्रह्म।

तू दाना बिना साचा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड़ियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अरपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर कै शब्द पिछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रैगुण हितकार चारे वेद कथा आकार तीन अवस्था कह वखियान तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कह हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा महे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता ना

लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया। हालत ना सोबा पलत ना टोई, अहला जन्म गवाया। हाँ खरी दोहेली होई, बाबा नानक।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नामे दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुर

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुंडप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे वेकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेयै पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है आपे मिलाइय रहाओ। आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हों मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान आने, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईए संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हो कुरबानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवै तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लह हर भावै हम अपराधी राखे गुरसंगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावै तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे

मन अन रस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहलै बोलै गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन कौ पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदी ए सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू मंत्र जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजिया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बार को हर प्रभ की है आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करे, हर राखे पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कही है मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुरपुरा क्यों मिले रहाओ। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा, इश्पुनी जन केरिया, ले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावै हर भगत सुनै, ते सतगुर मिलिया, टोटा मूल ना आवई, हर लाभ ने दृढ़िया, जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरै, हर गुण गा वाही, महला चौथा गौड़ी पूर्वी। हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंतन मुख हर बोली, गुरमुख रंग पया तगूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर से ती मन मान्या, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ। करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब ज्योत सबाई, हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख्या तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपुरै, सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन तन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से,
जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर तुम जे वडे अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिय हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते। मेरा मन हर सेती रचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे। राम मेरा मंतन बेद लियो हर साचे जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया। गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते सागत मूड नर काचे। तिनको जन्म मरण अत भारी विचविष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे करनाचे। आपे सह वड्डे प्रस्वामी हमन जारे हैं ताचे। मेरा मंत्र जियो राज सब तेरी जन नानके सह प्रभ साचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने। जिसते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राने। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अन रस हम देखे सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया मेरे सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते सागद मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो किथे हर पौ नसी है हर आपे बगसले प्रभ साचा। हर आप छाए छुट्टी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाओ। मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता जित सेवे नि कर वसीय। गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीय। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लहा हर मन हसीय। हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखीय। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटी है। ते सागत चोर जिन्ना नाम विसारिया मन तिन कै निकलना पिटी है। मेरे मन सेवो लख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटी है। जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै। मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो। मेरा मंतन लोच कनेरी राम मेरा मंतन लोच मिलन हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ। जो हमरै मन चित है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी। आन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाता पंथ बताया हर मिलिया आए प्रमेरी। आन दिन अंध पया वडभागी सब आस पुजी जन केरी। जगनाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुमा खिन ना टिकै बहुरंगी। दह दह दिस चल चल हांडे
ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਂਡੇ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਡੇ, ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਮਸਤਕ ਦਾ ਦੁਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਡੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਪੌਦੁੱਤਰ ਤਾਰ ਪਰਾਂਡੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਂਢਣ ਗਾਂਡੇ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਗਲਾਡੇ, ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਆਗੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਂਡੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਂਡੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਹੁਮ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਗੜ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ, ਹਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਗਰੋ ਕੀਆ, ਹਰ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਚਖ ਡੀਠਾ, ਰਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਲੇ ਮੀਠਾ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗ ਬਸੀਠਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈ, ਤਿਨ ਆਗੈ ਅਣ ਪਰੀਠਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਅਰਾ ਅਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤਿਨ ਅੰਤਰਕਾਰ ਕਰੀਠਾ, ਬਿਸੀਅਰ ਕਹੋ ਬਹੁ ਦੂਧ ਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਖ ਨਿਕਸੈ ਫੁੱਲ ਫੁਲੀਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰਸਾਧੂ, ਕਸ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੇਚਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਭਾਗੇ, ਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਹਾਓ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਹਉ ਮੰਤਨ ਦੇਵੋ ਘਟ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਾਗੇ, ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਆਨ ਜਲਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਿਓ, ਘਰ ਵਸਤ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਸਾਕਤ ਬੰਧਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਓਏ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਭਾਗੇ, ਹਮਰਾ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਮੰਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜਪਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਹਮ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਰਹਾਓ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਰਾਏ ਕੀ, ਗੁਰਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਭਇਆ ਮਨ ਮੋਰੈ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪ ਵਿਚਾਇਆ, ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਕਰ ਦੁਸ਼ਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ, ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤ ਆਏ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮਤ ਬਾਜੈ ਸਬਦਾ ਨਾਹਦ, ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਗਾਵੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਤਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਰਹਾਉ ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਕਮਾਵੈ, ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਤੋਵੈ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ,
जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रस आगा।

बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए, उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे, बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ, आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे, सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिखिया खाए, हों बंदा हों साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर, हों पंडित हों चतर सियाणा, करने हर न बुझै बिगाना, अपनी गत में ते आपे जाना, क्या को कह क्या आख बखान, जित जित लावे ते तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना, सब किश तेरा तू करने हार, अंत नाही किश पारावार, दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम, गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, आनक जतन नहीं होत छुटारा, बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगह सोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला, तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ, जो बोहित पैसा गरमा है, अंधकार दीपक दीपा है, अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख, उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत, नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जस आप देवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै, गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना, अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलतर उर ज्यो जान मेरी, ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते, त्रिगतन त्रिगतन माया संगराते रहाओ, जो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम, जो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा, जो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पल कछु नाम पड़े, जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बिना है आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधु, चखत होए रह बिस्मादु, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कत हूं जाइय, साध संगत वडभागी पाइय, आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद, इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पितर सुनियत साहो, कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे हारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जा मेले साहे कहो नानक गुर कै वे साहे गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी रैन दिन सो रह करंगा प्रभ को जाने सधी संगा ठाकर नाम कियो उन वर्तन तृप्ता गावन हर कै दर्शन हर संग्राते।

तुम राखो तिवि ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतर पेक शोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उड़ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्याप माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राख बाप ना माई, उनते राख मीत ना पाई, दर्ब सियाणप ना होए रहते, साह संगो दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जां कै वस खान सुल्तान, जां कै वस है सगल जहान, जां का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जां का दरबार, सगल भगत जां का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन यग निवारी, सतगुर पेट तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुरपैर। अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखे बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोला वै राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावै कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावै सर्वनिदान गुरु ते पावै आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जानी ऊपर प्रभु दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वनिदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभु अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तेरा जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पाओ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभु की पूजा पाई है मान जाकी टहलना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभु अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिलै वड्याई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रभु चित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का माने हर बिसर तो काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहुत अरण्यागास जाकी ज्योत जी प्रगास जाकी बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरणी पाहे कोट कलंक।

मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावै बहु जोन पवाइय, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमानै, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, हाम तन मन तो पालक सच नाए, हर गुण गावै सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल, खावै खर्चै रल मिल पाई, तोट ना आवै वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखिया भरपूर, सतगुर

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जाके हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जाको तुम दीनी प्रभ धीर, ताके निकटन आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर न जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमहे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहा कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनि मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिरस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवां, भले दिन

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दर्श पाई वट भागी जां की राम नाम लिव लागी जां कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्मा है ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ धारे पूरे सदगुर मिल सतारे।

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत शोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान,

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवां जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रांबिन से गाए गुणीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ जाकै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रवृदय निवास सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवां हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिक संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवां पौ सरण आई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन

निर्मल परताप साध संग मिट जात बेकार सब ते ऊच एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै सादरवाल गौड़ी महला पंजवां ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी मेल लय पूर्ण।

हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार पुरानी रहाओ। आठ पहर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांत भई गुरु गोविंद पाई। ता पाबिन से मेरे भाई रहाओ। राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ। सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ। तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया।

आरे नानक मांगत नाम आधारे हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक सा संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे को

मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावै आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु सरन गहो पूर्ण राम रतन ही अरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकजो, आतीखण मोकी फास काटन हार, जगत गुरु गोविंदो चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम दीना ना सुनो अरदास, कर गै ले हो नानके स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांतिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई, एक बसद बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यो पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पाया प्रम खिन मैं नाठा मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो, लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठे जायो, एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत् मिलायो, गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला, एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी, झांको आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्ग

बोले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते प्रम्पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाचै।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेगारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूड नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुर बोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर लै लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है, आगे तिल नहीं मानी है। अहं बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक। राज जो

अनक प्रकारी पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुजी है। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर।

तो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केल अनद खेल रहे फेर पय मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जाओ लाओ हाँ के सोचो चितवाओ तौ लाओ दुखन भरे जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप करम हों किए ते बंद परे जाओ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए जाओ लो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

क्या किश करै के करण हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरनी जियो, संता दासी सेवा चरनी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निव निव लागो पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन ना पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरनी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिये जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा। सुन सुन साजन मन

जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की शाही। जन नानक जग जान्यो मिथिया, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को, हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रह माया मैं, कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता, स्यों एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यो झूठो, एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो, एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, तासो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, तासो नेहो ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट नाम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नहन, तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तैं बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया।

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बहुचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर

सुख सहजे जपरदय मुरार, नजर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास, मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे, गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, हौ मैं करत्या न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए, ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ, अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाम, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ तरपवन धारे, आत्म चीनै सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारै है।

आप लाए आपे मत देवै, दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलादो धारे कृपा धारी।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलै सच सच है सच रे, ऐसा राम पग जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरिया रमीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पतमत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कभू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन।

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सा

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा कल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरे अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड़ सिर मार। निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिनकर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जिहवा यार नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन शब्द मूठे दिन रहनी, हृदय साच वसै हर नाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कही है, गुरमत चालो निचल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्रह्मणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरुलिये मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चिन्ह आप कहो सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी गुआरे री महला तीजा अष्टपदियां, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उतारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो

मन करहला अत निर्मला मन लागी हम मैं आए परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पाल आए ओ पाए कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, ब्रह्म पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सोहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नहीं है पार ब्रह्मा। जब इन किस कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तसलाथी। जब इसते एहो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सदगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सा सालाहनो नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतन निचल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे, जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै, जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, भौर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास, जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जप सुन अनहत तुने, जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरि, अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै, दस इंद्री कर राखै वास, ता कै आत्मै होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जा कौ दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है।

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दोराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म संग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जां कै सहज मन भया आनंद, तां कौ भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, तां कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया।

सहजे जाको परे ओ कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सहि धर्मा, जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास ता कै कुरबान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया, पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया, भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर्मत हरे रहाओ, इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना, शिवपुरी गा होएगा काला, त्रै गुण माया बिरस बिताला। गिर तर तरण गगन यार तारे, रव सस पवन पावक नीरारे, दिन सरैन बरत यार भेदा, सास्त सिमरत बिनसै गे बेदा। तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करै गो सगलो लोगा। जात वर्ण तुर कर हिंदू, पशपंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगले आकारा। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निहचर सजथाना। तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता। तैं सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार। कहो नानक जिस कृपा करै, निहचल थान साध संग तरै। गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै रहाओ। जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगै सजै। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निहचल तनी, जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो वंदन जागा। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सुग्यानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी। इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला। जा कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जा की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निहचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा। रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाहीं होर रहाओ। वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाहीं गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै। कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। मन अपने मैं फिर फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग। जा कै काम उतरै सब भूख, जा कै कामना जो है दूत, जा कै काम तेरा वड़ गमर, जा कै काम होवै तू अमर। जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कै दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा।
ਜਾ ਕੈ ਉਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤ, ਏਕੈ ਆਪਨ ਏਕੈ ਭਾਂਤ, ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਟ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕਾਲ। ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ, ਨਾ ਕੋ ਹੀਣ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ, ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਗਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰ ਪਿਆਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੈ ਸਾਖਤ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰਥੀਆ, ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਵਾਸ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ, ਸਾਗਤ ਬੇਸਵਾ ਪੂਤਨ ਨਾਮ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਂਗ ਸ਼ਤਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਕੂਰ ਸਾਗਤ ਮੁਖਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਭ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸਾਗਤ ਥਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਿਰਾਹੀ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ, ਸਾਗਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਸਾਖਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ, ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲਹਰਾਓ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जा पिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाई है। गुर शब्दे मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामण नहा प्यारी, जा हर के गुण सारे। सात हन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हम मैं मारे, इन बद मिलो प्यारे, सातन सोहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुरमिल रही है अमृत गही है, दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे।

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित न उपजै, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रहन सुख सुती जियो। अंतरे और तारे मिलिए प्यारे, आनदिन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे।

राम नाम वा पराग में अपारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सतबुद गुरुदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आद जुगा जो जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपै सोनो आपै सुख आसनो, आपै सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त मियानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एक उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा बिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पास अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम सेओ तऊ एव कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधू संग लेखे गणत ना छूटी है काची पीत ना शुद्ध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जा सके होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुभ देव ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रसराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया

भोगन हार हो सदयाया, हुआ कंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सह जे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन नाम मै राता, जा को दया मै बेदाता। एक कै आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर्श सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म न हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। का को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गंगा ग्रास काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिगसात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार सियान बहु चतराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जा का तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जा को दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवै जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अना को जाणै अपनो एकै टेक आधार रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभु रख्या पार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होइऐ जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै।

रहत रहत रह जाय बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रसमाते, नानक हर गुर की नींदाते। श्लोक लालच झूठ बिखै ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हर औखद सब कट है भाई, गुरपुरे बिन बिदना बनाई, गुरपुरै संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। पौड़ी ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ तारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही उपयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए मैं शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राख नहारिया पार, रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै छपाया। बाहर ज्ञान त्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरै अथा। जा कै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ओर निभावै। कहां बुजारत बूजै डोरा निस्कैयै तो समझै भोरा। कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सुआवै ना चीत जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत केल माया रंगरसै। दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए। नानक कहू ना सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक बस कारण बिखोट गवावै। एक पी ना दे दस पी हर ले तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकर स्यो नाही चारा ता कहो की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहूं मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै अनद उलास। अपनी अमान कश बाहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिस आगे राखै प्रभ की आज्ञा मान माथै। उसते चौगन करै निहाल नानक साहेब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत सर पर होवत जानिया नेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिन सहो मन पछतावै। जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तै आंद अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ ना आवै के हे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथया तन तन

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहरै मिथ्या नेत्र पेखत परत्रे रूपाद मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौ तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप ना करे आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियान पो सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रय रूप ना

वैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हर खरखा, कबहू सोग हर खरंग हसे, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार, कबहू नृत्य करे बहुपात, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू पला पला कहावे। ज्यो प्रभु राखे तिवहि रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभु पावे तिवै नचावे, ज्योत पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आप स्कौ कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बह जोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान का संग न जावे, बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदाय आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो पला कहावे, तसे पलाई निकट न आवे, सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख

संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजा ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना तृष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उसरत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे बिचार। जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, वडभागी नानक जन से। सलोक तजो सियान पसुरजन, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक, बिरथी सब जानो। देवन कहो एक है भगवान, जिसके दिए रह अगाए। बहुरना तृष्णा लग आए, मारे राखे एको आप। मानु कह किश नहीं हाथ, तिसका हुक्म भू सुखोए। तिसका नाम रा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, उसदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साह संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछानै, एत उत कियो सोजी जानै। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, तो सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। तो आंदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ही ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसे ना लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूक्ष्म सोई अस्थूल। न कि जन्मे न किश मरे, अपन चलता आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच था प्यो थाप। अबनासी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदर तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जब पै निहाल। उनकी सेवा सोई लग, जिसनों कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुभाय होवे सो होए, करने हर पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साव तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस महे समाए,
ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ, ਆਪ ਸਕਉ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ।

हरे मन मेरे सदा हर जाप, अबनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु ना होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किस काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है, धनवंता होए क्या को गर्व, जा सब किस तिसका दिया दरब, अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को होए बह दातारो, तिस दिन हर जाने गावारो, जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सोजन सदा अरोग, ज्यो मंदिर को थम थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिललाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तसै चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे आजान, कौन बसती आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पासे ती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अब मान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संते संचाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सदबलिहार है, चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान, साध सेवा वडभागी पाईए, साध संग हर कीर्तन गाईए, अनक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, ओट गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत

जिस हो वैसो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म मैं राख, मानव की तू प्रीत त्याग, तिस्ते पर नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग।

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवे से, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊच नीच उतिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के भजन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काट नहार, जा के संग तरे संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे सुमाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर का सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक प्रभ पालनहारा, सेवक की राख है निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धार है, नानक सो सेवक सा सा सुमार है,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लखे, जिसका सासना काटते आप, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नाम नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यो रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्स सब पाप मिटावे, अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर से के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर से कौ नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर से का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर से कौ जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आप सिखाओ कर कछ ना जनाव, हर हर नाम हृदय सत्याव, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जानो जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बबेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सबरिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀ

सुनत कह तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहे प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यो गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो, अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण।

सिर जोरा अमर है, नित देवै भला जोरा दाख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला। काम व्यापक शुद्ध नर से जोरा पुछ चला, सतगुर कै आख्या जो चलै सो सतपुरख पल भला। जोरा पुरख सब आपो पाया नो हर खेल सब खेला, सब तेरी बणत बनावनी नानक पल भला। पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो अथाहो है अतुल क्यों तुलिया, सेवड़ पागी जे तो त्याय दे जन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है सतगुर की रिसै, होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओ नांदर होर मुख होर है, बिख माया नो चख मर दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा, सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही, तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर किवे राईयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै, ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवै, एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा, जिन्ना अंदर नाम निधान हर, तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंक।

मंत्र बतै हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिया दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावै सो करे कराया, नानक वज

हो भणियै, जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धणियै। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया, विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करतै सब हिर लई, बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखीऐ, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह।

अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए, नानक लद्दा तिन सवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वच्छल तेरा।

रूप देखे सब दुनिया, गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या शोक करी जय, तो की जय जो अपन जी जय, मैं ना मरो मरबो संसारा।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

वेद की पुत्री सिमरत पाई, साकत साकल जेवरी लहै आई, आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहाओ, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

बाद सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगिया पावै। बिखिया जो सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्ही है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पए सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का ओ रव रहे कबीरा। गौड़ी गुआरे री अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पिछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर ताज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया परपूर।

कहे कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भए राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय बिचार है, सूतक तने ना होई। गौड़ी चगरा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सो काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा से उपाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहू कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहू खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन कया ना लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे। अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले। पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया। बिखिया सो लपटाना, गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे। ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है। बौना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। गुरमत मनुआ असर रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनख चढ़ाई है, एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंदी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे। तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना। गुर प्रसाद अगल पई अवर, ना तर था बेगाना रहाओ। निवर दूर दूर फोन निवर, जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए, ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ, अर्ध उर्द दो तै नाही। रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, आगमा गोचर रह निरंतर। गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने। सत्संगत मिल रही है, गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे। पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गूण परी कट पीतर। इन बिद टांड बिसाहे हो, ऐसा नायक राम हमारा। सगल संसार की ओ बनजारा,
रहाओ। काम क्रोध द्वय भय जगाती मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी, इसनो क्यों आखिए क्या करे विचारी। पई निरासी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहूं कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही परजान ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिया पाचन से अडाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतनी निकसै नतर रही उर जाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संयोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यो कासी उपदेश होए मान स्मृति बार। कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे। ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे। ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे। ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे। ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख परम लागी हृदय नाहि बिचारे। ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना धारे। ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे। ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे। ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे। ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे। ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश। काम सो आए गज बस परे मन बवारे अंक सहयो शीस। बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरारे। गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरारे। नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरारे। मायायो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरारे।
ਤਿਉਂ ਪਸਰਿਓ ਉਪਾਸਾਰ ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ।

तस कर निर्णय आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मुकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिनो, कही ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबन अरसत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौ राशि जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिया, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने ना की जय आस। रमैया गुन गाइए, जाते पाइए परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब

राग गौड़ी पंथ निहार कमनी लोचन परी ले सासा और ना पीजे पगना खिसै हर दर्शन की आसा उडहो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की पद करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कंत तुरसी का बिरवा माज बनारस गाऊ रे ओवा का स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आओ ना जाऊ रे तोहे चरण मन लागो सारंग तार सो मिले जो बट भागो रहाओ बिंद्रा बान मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जा का ठाकर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी बारहवीं गौड़ी पूर्वी बारहवीं बिपल बस्तर केते है पहरे क्या बन मध्य बासा कहां पया नर दे।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा से

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर।

बस्त अनूप बीच पाई, पुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मैं रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगा सो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेहे बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटा ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जाओ पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, आस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कते ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखे जाओ कोई दूर न पर।

ससा सोनी का कर सोदो, कट परचा की बात न रोदो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंत्र भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा। ससा सो सहसे सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब एह त्री

है मनमाना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिती कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिती सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थिती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मल। हर कीर्तन में अंदन जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगै रहो कर्म तर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटै संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निद्राया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर मैं रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मैं वाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुधा करै बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ लो महल न लाबे जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग

राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा,

हरा गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुआरेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रमफास, प्रेम

अकाल मूर्त वजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित पै सर्व संभाले।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वखियाण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पए है, टूटे बंधन फाहे, ज्योति ज्योत समाणी भीतर, ता छोड़े माया के लाहे। सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश लीजी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचै अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे पेही को पावै, तुझ आपे पावै तवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शहु भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सहि सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंश, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वारो जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्से पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रहै समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौ जल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिन कौ आप लय प्रमेल तिन कौ काल न साकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त वेद सिमरत बहु भेद अठ सठ मजन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागै नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै आसा महला पहला निम्न उपाय

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीख को भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहे सारे तरे त्यान। तुते वड़े

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा।

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विणना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पाहरू राशब चोर ना लागे, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तु ना जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रहया प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यो मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता।

मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डुबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी, दुरमत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौंदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी, दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा, मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा। इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सौ जागै हो निष्परसोवा। रहाओ आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई। हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ, प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी। गया सो जो बन तन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निराशी। रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवे पतार। तव नानक कंते मन पावे, छोड़ वडाई अपने खसम समावे। रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी।

सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको

लख खटिया लख संजिया खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेख ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त्र समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेख ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हौ सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवां महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रह जैसे पवै उदासे मन मेरा दयाल से ती थिर न रह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन विद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ताको कही है बंदा। आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो सहज।

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसै पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुवै जन्म नहारै कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस ना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग खड़ दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमे अपारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कहो लगे ना पीर जम काल तिस नेण ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए सतगुर सेवे तलना तुमाए निरपव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाणे साची बाणी सूचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण्या मोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचा शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जमन मरना है संसार मन मुखा चेत।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार, जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता, गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई, जज काज पर थाए सुहाई रहाओ। जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंतबो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया, बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप, इच पूरे मनकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी, सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ, धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई, सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै, गृह बसन ना देई वख वख परमावै, घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर, तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास, जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै, होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हो कै पह जाई, सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया, निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्र मिलियो नानक पै अचिंता, कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी, रहाओ दूजा। आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया, महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया रहाओ। सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश, जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान, तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर, तेरे सेवक किसकी कान, सगत पूला फिर बेबान, तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाग सब दे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी, देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ। साहे पठाया साहे पास, अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी, सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया, सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद, तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया, सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो, नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी, बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो, की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना, क्या जाने हो लोका जाना रहाओ।
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो प्रै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिर हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण प्रभु समाल, देखत सुनत तेरा है नाल, कहो नानक जे होवी भाग, मान छोड़ गुर चरनी लाग, आसा महला पंजवा। दुख रोग पय गत तंते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, पय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए, तपत बुझी गुर सब दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ, तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकड़े निश्चल।

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाक साल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरै पुगै भोग आचार करै शोभा मै लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जो

लागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत, आसा महला पंजवां। नौ नित तेरह

जो तू करै सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनाशी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दा

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर।

गुर पूरा प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप कश युक्त न मोरी, गुर नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन मैं ले जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा मैं व्यापै चिंद। हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो छेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही ना जाए, हर रस साधु हर सुमाए। लाख करोरी मिले ना के हे, जिसे प्राप्त तिस ही दे हे। नानक चाख पए बिस्माद, नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावै, छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए निमाणी सेव कुमावै, ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म सुध बिखत्या सिनवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा, आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक, सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवा दो पदे, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै नाकाम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम तरम ना कुमाया। सेवा साध ना जान्या हर राया,

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्र

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत जोग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवां, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रख है, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखाव जो ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नोके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइया। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देह वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूके अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपौ पय सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना।

रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास धरी तिन माया। आसा महला पंजवा। राज लीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखा बने तेरे ओले भ्रम के परदे सतगुर खोले। रहाओ हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महान निर्वाणे। जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण। जा को मिल्यो नाम निधाना पंडित नानक ताका पूर खजाना। आसा

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वसे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई यो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

उनकै संग तू ग्रह मैं मार, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मन महत, उनकै संग तुम साख जगत, उनकै संग तेरी सब थाटी, उस बिना तू होई है माटी, ओह बैरागी मरे ना जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, जोड़ विछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप, आसा महला पंजवा, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हम कौ दुखे, अवरना को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ, ना उस बंधनो ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सदकेला, ना उस सोच ना हम कौ सोचा, ना उस लेप ना हम कौ पोचा, ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा, जाहो निर्मलो ता हम जचना, हम किश नाही एक ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुरखोए परम पंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा, आसा महला पंजवा, अनक पात कर सेवा करिए, जियो प्रांतन आगे धरिए, पानी पखा करो ता जब मान, अनक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागन जो प्रभाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ, दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथे भागता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म

दिन सरैण ए सेवा साधो भय कृपाल गोपाल गोबिंद सा संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए प्रभ की प्रीत।

प्रभ की प्रीत पय सकल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओठ प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड़ पर्त पा वड़ परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जानै। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकी पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही। बहुर बहुर तिस लागे पाई, साल ग्राम हम

सदा बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूल है ता का धूप सदा प्रफुल है। काट काट संपट है रे जा का अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंच पदा। जेह पेंड है लूटी परिहारी सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ। जह लालच जागाती काट दूर रही ओ जनते बाट। जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध। चित्र गुप्त सब लिखते लिखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा। कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा। आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने। जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ। लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार। अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ता की परम गत होए। आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा। साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन आधार। चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ। जा कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग। आस

की तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवा माथे त्रिपुटी दृष्ट करूर बोले कौड़ा जेह बाकी फूड सदा भूखी पर जाने दूर ऐसी स्त्री करामो पाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मन मुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकर हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरे स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाई है गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही पली पांत सब सह समाही। जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साइय साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख न चूर्ण। ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जाको भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार ओह आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख अपार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। जिन सरैण आराध संभाले साह साह, नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह। आसा महला पंजवां पूर रया सर्ब ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सिर छत दूजा नाहे कोए। ज्यों पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रव आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिसना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिया, नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवां क्या सोवै नाम विसार, गाफल गहलिया कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है, आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मलना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवां कोई न किसी ही संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ।

विनाशय सगल रोग। राखन हार अपार राख अगन माहे, शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए। सुख सहज आनंद कणा नानक जन तूरा, कार्य सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपुरा। आसा महला पंजवा, गोविंद गुणी निधान गुरमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए। आवो संत मिला हर कथा कहानियां, अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां। रहाओ जप जप जीवा नाम, होवे अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया, तन सुहावा मुख जिन हर त्याया। जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई, नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा, आवहो मीत एकत्र होए, रस कस सब पुंच है। अमृत नाम हर हर जप है, मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे, खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे। रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लै हो, हम मैं बिख जा रहो, साचा हट

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जैसे कै उजली तिस दासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदरे अपना हर नाम जी ठहरंगरी, त्याग स्याण पचातरी।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोए शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समराथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंगी है सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मंतन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक क्रिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनस मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई, जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश ना है, ज्यो ज्यो राखै त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटै, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पौ नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करै, जे भगत तेरे जाचै, एहो तेरा बिरद कर जोड़, नानक दान मांगै, अपनिया संतां देह हर दर्स। राग आसा महला पंजवां, कर तेरवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवां, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे, नानक शरण आहे।

हो, कृपा पाए सहजाए दर्शाए अबरातिया गोविंद स्यों, संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए, सहजाए मन निदान पाए, सब तजी मने की काम करा, चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए, आसा महला पंजवां, को बिखमगार तोरै आस प्यास तोह मोह, परम ही ते हो रै रहाओ, काम क्रोध लो मान एह ब्याद शोरै, संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावो, अंदिनो प्रभ त्यावो परम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम रहाओ, तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग, प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग, कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां, हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ, खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो, खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो, राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां अन ना उपाव कर हां, तौ निकसै सरन पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां बाहर अनेक तर हां, राजन योग कर हां कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवां, मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिय गुर कृपान में।

जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर जोत, बिन नामे सूतक जगशोत, दुर्मत बिन सै क्या कह रोत, जन्म मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवै मीत, त्रैगुण रोवै नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहुसंख असंख, बिन भय भगति जन बिरंथ, हर गुण गावै मिल परमारंथ, आप मरै मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए, नानक सूतक जन्म मरी जय, गुरप्रसादी हर रस पी जय, राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमाने मनते मन तीरा, ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिव तरे, रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिफत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए, कंचन काया जोता नूप, त्रिपवन देवा सगर स्वरूप, मैं सोतन पल्लै साचा खूट, पंच तीन नव चार समावै, तारण गगन कल तार रहावै, बाहर जा तो उल्ट परावै, मूर्ख होए न आखी सूजै, जे वारस नहीं कया बूजै, बेका माता जग सो लूजै, उत्तम संगति उत्तम होवै, गुण कौतावै अवगुण धोवै, बिन गुर सेवे सहज ना होवै, हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नजर निहाल, आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख मैली मैल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी, रहाओ अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन ने केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान, साचा हरख नाहीं ते सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग, पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई, टाहे उसारे हुक्म समावै, हुक्मे वरतै जोत इस पावै, गुर बिन पूरा कोई ना पावै, बालक बिरद ना सुरत प्राण, पर जोगन बूढ़ा अभिमान, बिन नामै क्या लैस निदान, जिसका अंतन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सदगुर राखे सेवट भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा महल

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाण। गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हम मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली हर पत राखै। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हम मैं ग्रास एक तथा किए। गुरमुख राग स्वाद अंत आगे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अन हद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निसो हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेद बाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सो थीए, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके, ऐथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंडो मैला, कहां सो बंकसराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनों आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किने ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है, दुख सुख तेरा पाना होवै, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई, पिंड पवे जियो चल सी जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई। धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो, ओह ना सुनी कत ही, तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना, तानी दना होई।
जे चलदा लै चलिया के संपै नाले तां तन संचो देख के बूझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो औगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर वैसी किरस कमावो तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूडिया को निमी मेंडा जे तुद पावै साहेबा तू मैं हो तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिध सिद्ध मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना अंतर वसना जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन मैं तप करै नित तीर्थ वासा आप नचिन तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाय सजाण नानक नाम न विसरै साचे मन मान है। आसा महला पहला। मनसा मने समायले पहो जल सज तरना या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाय गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाणे गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट फटाया तंद पिटे संसार सच ना पाया क्या पवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जे अपने कर आया रहाओ। सच मिलै सचियार कूण ना पाई है सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो रोए ना जान हूं रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं। हुक्मी मजो लिखाए आया जानी है लाहा पलै पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानी है हुक्मे ही सरवार बंदर बाणी है। लाहा सच न्याओ मन वसाई है लिखिया पलै पाए गर्व न्याई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहेब हृदय वसाए न पछोता वही गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगे सच गुरमुख कहली है मैं तुझ बिन अवरना कोए नदर निहाली है। आसा

नाम हर हर नाम मेरा प्राण वसाए, सब संसार दुख गवाया। अदिष्टया गोचर गुर वचन ते आया, पवित्र परम पद पाया। अनहद धुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी। नानक दात करी प्रभ दाता, ज्योति जो समाणी। मन मुखा मन मुख मोए, मेरी कर माया राम। खिन आवै खिन जावै, दुर्गंध मड़े चित लाया राम। लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, ज्यों रंग कुसुंब दिखाया। खिन पूर्व खिन पछम छाए, ज्यो चक कुम्हार पवाया। दुख खावै दुख संचय भोगै, दुख की बिरद वधाई। नानक बिखम सोहेला तरियै, जा आवै गुर सरनाई। मेरा ठाकरो ठाकर निका, अगम अथाह राम। हर पूंजी चाही, मेरे सतगुर सहा राम। हर पूंजी चाही नाम विसाही, गुण गावै गुण पावै। नींद भूख सब पर हर त्यागी, सुन्ने सुन समावै। वणजार एक पाती आवै, लाहा हर नाम लै जाहे। नानक मंतन अर्प गुर आगे, जिस प्राप्त सो पाए। रतनारतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोल करतन अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद विरोल श्री राम देखिया, एक वस्ता नूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। आसा महला चौथा, चिम चिमे चिम चिम वरसै, अमृत तारा राम। गुरमुखे गुरमुख नदरी, राम प्यारा राम। राम नाम प्यारा जगत निस्तारा, राम नाम वडियाई। कलयुग राम नाम बोझता, गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले, गुरमुख करनी सारी। नानक दात दया कर देवै, राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया, दुख किल विख नाश गवाया राम। गुर परचय त्याया, मैं हृदय राम रवाया राम। रविया राम हृदय परम गत पाई, जा गुर शरणाई आए। लोभ विकार नाव डुबदी निकली, जा सतगुर नाम दड़ाए। जी दान गुर पूरै दिया, राम नाम चित लाए। आप कृपाल कृपा कर देवै, नानक गुर शरणाए। बाणी राम नाम सुनी, सिद्ध कार्य सब सुहाए राम। रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम ते आए राम। राम नाम ते आए पवित होए आए, तिस रूप ना रेखिया काई। रामो राम रविया कट अंतर, सब तृष्णा भूख गवाई। मन तन शीतल सिंगार सब होवा, गुरमत राम प्रगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम विसारिया, से मन मुख मूढ़िया भागी राम। तिन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड भया भागी, जिन राम नाम नहीं पाया। अनेक कर्म करे अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, कालूखत मोह अंधियारा। नानक गुरमुख नाम ते आया, ता पाए मोख दुवारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहो मनु आखिन उपयाली, परम दा इकत कर आने राम। मन इकत कर आने, सब गत मित जाने। हर रामो नाम रसाए, जन की पैज रखे राम नामा। प्रहलाद उधार तराए, रामो राम रमो रमूचा, गुण कहते अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने, रामै नाम समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै, तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया, राम नाम ते आया, राम नाम गुण गाए। दुरमत कबुध गई, सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ, जित राम नाम प्रगासिया।

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना। राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना। जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया। राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया। जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे। हाँ मांगाऊं शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा। तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा। पंथ दिशावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे। गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके। गुर तुठे हर पाया चूके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके। आसा महला चौथा। हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। धन धन वणजारा वणज है गुर शाहो साबासे। जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वणजारा राम राजे। सब भांडै तुदै साजिया विच वस्त हर थारा। जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा। जन नानक हर बख्शिया हर भगत भंडारा। हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे। हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो। हम मूर्ख किशु ना जानहा क्यों पावै पारो। जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो। ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल विगाड़ै दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा। जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुना चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किसै दै किश नाही सब चलै चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिलै जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर

क्या की जाए, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हाथ दी जाए, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगण सियाने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दी बाण है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवै, जन नानक हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघना होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ करे हर गुरु मिला वो मेरे प्यारे, कर वसै हरे रंग रलियां माणो मेरे प्यारे, हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे, मेले हरे मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारे, भाव करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित्यास करे नित जो बन जावै मेरे प्यारे, जमसास हरे भाग मणि सोहागण मेरे प्यारे, नानक हरे उर तारे, पिर रत्याड़े मैंडे लोयन मेरे प्यारे, चातर बूंद जेवै मन शीतल होवा मेरे प्यारे, हर बूंद पीवै तन बिरोज गावै मेरे प्यारे, नींद न पवै केवै हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे, नानक गुरु लेवै चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भली रुते पिर बाजड़ो मेरे प्यारे, आंगन तूल लुते मन आसो डीनी मेरे प्यारे, दोए नैन जुते गुरु नानक देख विकसी मेरे प्यारे, जो मात सुते हर कियां कथा कहानियां मेरे प्यारे, सतगुरु सुनाइयां गुर विटड़िया हो कोली मेरे प्यारे, जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे, मन चिंदेड़ा फल पाया हर तुथड़ा मेरे प्यारे, जन नानक नाम समाया प्यारे, हर बिन प्रेम ना खेल सा, क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा, हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेल सा, गुर नानक पाया मेरे प्यारे, तुर मस्तक लेख सा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पंजवां, शंत कर पहला, अनदो अनद घना मैं सुप्रभ डीठा राम, चाखियाड़ा चाखियाड़ा मैं हर रस मीठा राम, हर रस मीठा मन मैं बूठा, सतगुर तूठा सहज पया, गृह वसाया मंगल गाया, पंच दुष्ट ओए भाग गया,
ਸੀਤਲਿਆ ਗਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਵਸੀਠਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ਸੋਹੇ ਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ਪਾਹੁੜੇ ਪਾਹੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਮਾਨੀ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਦੇਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਤਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਵ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਈ ਰਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਦਾ ਸਿਖਾਈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗਣਿਤ ਮਿਟਾਈ ਚੁੱਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋ ਬਣਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ ਸਰਸਿਆੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਮੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮਿਆ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਪੀਤਾ ਪਰਮਗੜਾ ਪਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪ ਖੜਾ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਕਥਾ ਹਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਰਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਹਿਜ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ਸਹਿਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਮਿਓ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜਪ ਏਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਪਰੰਪੋ ਭਾਗੇ ਆ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਦਰ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਤਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮ ਸਤਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਜਿਨ ਭੇਟ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਦ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾਂ ਰਾਮ ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਐ ਮੈਲ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥੇ ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਨ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਾਂ ਆਸਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਕਿਛ ਆਨ ਨਾ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗਤਿਆ ਰਾਧਿਆ ਹਰ ਕਟਕਟੇ ਡੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਬੂਠਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਗੁਣ ਨਿਧ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ ਹੁ ਮੈਂ ਬਿਨਸੀ ਗਾਠੇ ਪ੍ਰੋਸੈ ਸੁਭਾਈ ਛੋਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਬੇਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਿਛ ਆਨ ਨਾ ਮੀਠਾ ਜਿਉ ਰਾਤੀ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਰਸਮਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਜੀਵਨਗਤ ਭਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੀਵਨਗਤ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਵਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਪ੍ਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋਟ ਨਾ ਕਟਹੂ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗਰ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਟੈ ਨਾ ਦਾਤੇ ਜਲ ਸੰਗ ਰਾਤੀ ਮਾਛਲੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਾਤੇ ਚਾਤਕ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਐ ਹਰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਐ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਜਗ ਜੀਵਨੋ ਸੰਤ ਰਸ ਪੀਵਨੋ ਜਾ ਭਰਮ ਹੋ ਦੁਖ ਡਾਰਾ ਚਾਤਰਕ ਜਾਚੈ ਬੂੰਜਿਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਢਾਠੀ ਪੀਤ ਭਰਮ ਕੀ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਾਏ ਸਭ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ
सुख सहज आनंद कनेरे पतत पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मनोरथो पूरा आसा महला पंजवा शंत कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम सिंह पेटत साध संगात शंत जल दुध न्याई रीत अब दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उलझो अल कमले बासन माहे मगन एक खिन पी नाहे टर खिनाहे टरिय प्रीत हरिय सिंगार हब रस अर्पी है जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तै साध संग ना डरपी है कर कीर्त गोविंद गुणिए सगल प्रायश्चित दुख हरे कहो नानक शंत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चातरक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय हो मन दी जय तलाइय चित मुरारी मान की जय सरन परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिल नहा विशुन्ने तन देंदी सह स्नेहा कहो नानक शंत अनंत ठाकर के हरस्यो की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस कणी कद नियर देखिया कोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न दीजै एक राती के हब पाहुणिया आप क्या रंग लायो मोहर चायो नंगे अमन जावणिया फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूट समोह जो कीती है कहो नानक छन दयाल पुर के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निस्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओडवै मन ऐसी प्रीत की जय जैसी धरण पतार उर्जी पर सिवै एह मन लाल दी जय मन लाले दी जय पोकरी जय हब खुशियां रंग माणे फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुरथिया साखी तां डिठमे आखी पर जेहा अवर ना दिसै कहो नानक छन दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आसा महला पंजवा सलोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे शंत जा कहो खोजै असंख मुनिया नेक तपे ब्रह्मे कोटा राधै ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन कहो निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझै आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार संकट संकर जटा तार चाहे तुझै दयार मंतन रुचि अपार अपार अगम गोबिंद ठाकर सगल पूरक प्रभतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावै जा कि नर गुण बणी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मेरे उधार कोट देवी जा को सेवै लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जा को आराध पौन पानी दिन सरात नखयत्र ससियर सूर त्यावै बसद गगना गावै सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावै सिमरत पुराण चतर बेद खड़ शास्त्र जाको जपात पदत पावन भगत वछल नानक मिलिया संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती न जाय गनी अवगत अगंत अथा ठाकर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचके एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ता की उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए शीस साधै धर चरणी आसा महला पंजवा सलोक उद्यम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवै दुख दर्द भ्रम जाए शंत नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पेट साधु संग जमपुर न जाई है
दुख दर्द ना पवे आपै, नाम सिमरत सद सुखी, सास सास आराध हर हर, त्याय सो प्रभ मन मुखी। किरपाल दयाल और साल गुण निध, कर दया सेवा लाई है, नानक पयम पै चरण जम पै, नाम जपत गोबिंद नै अलसाई है। पावन पतत पुनीत नाम निरंजना, परमा देर विनाश ज्ञान गुर अंजना, गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल थल महियल पूरिया, एक निमख जाकर दै वसिया, मिटे तसै विसूरिया। आगाध बोध समरथ स्वामी, सर्व का पौ पंजना, नानक पयम पै चरण जम पै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिद्धे, हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उदरन हर हरे, सागर संसार भवोतार, नाम सिमरत बहुतरे। आदि अंत बेअंत खोजै, सुनी उदरन संत संग बिदे, नानक पयम पै चरण जम पै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वछल हर बिरद्या बनाया, जय जय संता राधा तै तै प्रगटाया, प्रभ आप लिए समाए सह सुवाए, भगत कार्य सारिया, आनंद हर जस महा मंगल, सर्व दुख विसारिया। चमत्कार प्रगा दै दस एक तह दृष्टाया, नानक पयम पै चरण जम पै, भगत वछल हर बिरद आप बनाया। आसा महला पंजवा, थिर संतन सुहाग मरै ना जावे, जाके गृह हर ना हो सो सद ही रावे। अवनाशी अवगत सो प्रभ, सदा नवता निर्मला, न दूर सदा हदूर ठाकर, दैद पूर्ण सा सदा। प्राण पातो गत मत जाते, प्रे प्रीत प्रीतम भावे, नानक बखाणे गुर भजन जाने, थिर संतन सुहाग मरै ना जावे। जा कौ राम पतार, ता कै अंध घणा, सुखवंती सानार शोभा पूर बना, मान महत कल्याण हर जस, संग सुरजन सो प्रभु। सर्व सिद्ध नम निध, तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु, मदर बानी प्रहमानी, थिर सुहागता का बना। नानक बखाणे गुर बचन जाने, जा को राम पतार, ता कै अंध घणा। आओ सखी संत पास, सेवा लागी है, पीसो चरण पखार आप त्यागी है, तज आप मिटै संताप आप न जानाई है, शरण ही जय मान लीजै, करे सो सुख पाई है। कर दास दासी ताजो दासी, कर जोड़ दिन रहन जागी है, नानक बखाणे गुरबचन जाने, आओ सखी संत पास, सेवा लागी है। जा कै मस्तक भाग, से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिनसा संग पाया। साध संग हर कै रंग, गोबिंद सिमरन लागया, परम मोह विकार दूजा, सगल तने त्यागया। मन सांस है सुभाव उठा, आनंद मंगल गुण गाया, नानक बखाणे गुर बचन जाने, जा कै मस्तक भाग, से सेवा लाया। आसा महला पंजवा श्लोक। हर हर नाम जपंतिया, कछ न कह जमकाल, नानक मन तन सुखी होए, अंते मिले गोपाल। संत मिलो संतन कै संग।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ताल लपटावै। खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमलत पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तर सब हरे। मन ए छपाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤ ਕੂੜ ਲਵਾਇਆ।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया।

अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरीऐ हों विच धोवै हों विच जाति जनसी खोवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मूत की सार ना जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जन तो पाया हों मैं बूझै तांदर सूझै ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

पाए हौ मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए हौ मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराहे हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कह।

अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाहा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाहे कह संभाले सब नाहा जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला। लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आर जा पढ़िया जेते सास। नानक लेख एक गल होर हों मैं चखना चाख महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाना है फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए आसान देसे ते नह केवल हमें शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे। नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लैनी धाम दे। कमूल ना बुझन अपना अण होंदा आप गणाए दे। हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे। तिन मंगा जित जै त्याए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार। कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला। सच ता पर जानिया जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रेसिया ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बीओ। सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड्डै तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्लै होए। पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिलै ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी होए एक मन अलख त्याई है। फलते वे हो पाई है जे वेही कार कमाई है जे होवै पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाई है मा थोड़ी सेव गवाई है। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरतिया काल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। जे कहोए ता उगवै रुती हूरत होए नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए।
ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਮ ਭਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀ ਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाण कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल इयाने दोस्ती वाडारू सोने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाओ ना थे हो महला दूजा होए आना करे काम आण ना सकै रास जे एक याद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा वास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चलै अरदास श्लोक महला दूजा।

नानक सेवक कंडीय जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

पहर चोलना गधा नाचै पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए कने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै कीस गलौरे लियावै कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै बंस को पूत बियाहन चलिया सोए ने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जसै द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा।

कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन कौ पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे ए मूर्त साची है तौ गण नहारे खाओ पात पहत अर लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखसार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछ तप ना कियो तीस बरस कछ देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तब रे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर।

ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसियो जाना, कह कबीर मोए ब्याई चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे, सेजै रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया।

मेरी जेहबा बिसरने नारायण हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर्जै, पस ना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

जौ तन चीरा अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनोरे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे उताना। तरने आकाश की कर गै बनाई, चंद सूरज दोय साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सुते सुत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछू ना होवे, ना ही राम एयाना।

नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैंतराई। दिन सनारैन बेदनी शास्त्र।

आनीले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर कौ नैवेद करो, पहले दूध बिटारियो बछरा, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाति, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंगन रंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी। रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरे गारे, संसार सागर बिखे को बना। झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला। संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश। पंच दोखिया साध जा मैं, ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच। मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। काल फासा बद लागे, कछ ना चलाए उपाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने। संत देवा देव, संत ची संगत, संत कथा रस। संत प्रेम माजै, दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण, संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सण। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा।

जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कहरव दास चमारा आसा। कहां भयो जव तन भयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ। संपत विपत पटल माया तन, ता मैं मगन होत ना तेरो जन, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रवदास छूट बो कमन गुण आसा। हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम देव दूध पी आया, तव जग जन्म संकट नहीं आया, जन रवदास राम रंग राता, इं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौरे फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रवदास बाजी जग पाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाये समानी जाके, अछली प्रपहचानिया, तन है तन पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देव मन लीना, आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रवदास टुवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जाटरो, उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबे ना जान सकोई, जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही, पाखण कीट

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिमरन।